सुनने वालों एक मजे की बात सुनिए। एक रोमांटिक पिक्चर देखकर मैं घर आ रहा था। रास्ते में आर डी बर्मन का एक गाना गा रहा था कि अचानक वो मिल गई।

0: Let's go.
1: चलो अब चले गए, प्रश्न ही उठता, मैं तो सो ही जाता।
0: अरे बाहर निकलो।
1: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
0: ये आप बंद करो।
1: सॉरी।
0: टोकरी संभालो, जगह कैसी?
1: बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
0: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
0: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
0: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
0: सोच लो।
1: सोच लिया।
0: और अगर नहीं कर सकी तो?
1: हार मान जाऊंगा।
0: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
0: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
0: मंजूर।
1: मंजूर, काम तो बताइए।
0: जरा सोच तो लूं।
1: हाँ।
0: वो देखते हो वो?
1: हाँ।
0: क्या?
1: मुर्गी।
0: हाँ पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
0: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ, ये लीजिए।